的 cash flow issues 问题之呢，啊，都用到的亏个钱不到，哎呀，被说出来还得打个，啊，这 fundraising documents 啊，哎，啊，就不哎个把那一点钱都不呢，都不还是按你 federal regulatory compliance 问题，哎，啊，就一个把那一点钱都不呢，打那钱就呢了。आदो पाना हो जोलने के ए यहाँ दी दे सोल सोर्स वो यही के जो ए आजो ए दांक कॉन्ट्रैक्ट जो हो तो नी शायद नी गो जो हो आ अलिया ए दी इंडिजुअल्स डिजाइन स्टूडियो एंड आर्किटेक्ट्स वो यही के ए ए या कौन कोटे हाँ हो शी पेशेंट जिंज सब्सेक्वेंट वो ये सब्सेक्वेंट एफर्ट आ दे हो आ अन ले नो वो चेट्स को बिच हन ले चेट ने ना लो ना शरीर नीला ऐसे आज बच और ना आदो इन द ए ए यहाँ ऐसे नो आ दी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हटे लिया ये ए या दी IDSA देखने इंडिजिनस डिजाइन स्टूडियो एंड आर्किटेक्ट्स ए और ये ए ए या दी जिनी होम ये सब कॉन्ट्रैक्ट चीन इधर लिखने अ कौन-कौन ऐसे नो बनाओ जो जो ने को ए या दी प्रपोज़ल के ए ए या ए ना सोते शीज़ ए अ कौन-कौन निश्चित ने ना ओब के हो नोट जो ए बनी ना के ऑफिस ऑफ़ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो आदों द इंडिजिनस डिज़ाइन स्टूडियोज़ एंड आर्किटेक्ट्स बताई आयु सा होलों बनी ना अ कौन ए ए या